0: आपको वो नहीं
1: लिखा।
0: मॉर्निंग, कैन आई गेट ईए सस्पेक्ट फ्रॉम लिंकन स्ट्रीट पासवर्ड ओल्डी।
1: Conscious and alert, male, female.
0: Going to be a male, breathing but not responding.
1: All right, so I was coming too.